ऐसा मौसम और ऊपर से ऐसे गाने, ओह माय गॉड, मजा ही आ गया. थैंक यू सो मच. आप कह रहे हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप म्यूजिक. Well, that's exactly what my point is, that ke aap achhe achhe classics suno. I try to, you know, put a good mix of everything, okay? To ye jo gana hai, as we know, Reshma, jo Pakistan ki singer hai, the renowned legendary singer Reshma, unhone gaya hai. Aur kai logon ne is gaane ko gaane ki koshish ki. Aur achhe se gaye bhi, I've heard in so many reality shows. But kehte na, boss, original to original hi rahega. जिस तरह से उनकी आवाज़ झलकती है इस गाने में, वो दर्द और हर लव्स के साथ एक कनेक्शन सा बैठता है, यू नो, लाइक इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हीरो, जो मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ की फर्स्ट फिल्म है, डायरेक्टेड बाय सुभाष घई, एज वी नो वेरी वेल. और रेशमा पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं गाऊंगी फ्रॉम सुभाष घई. शी वॉज स्टेइंग एट होटल सी रॉक इन जुहू इन मुंबई एंड स्टेटिंग दैट शी इज़ अ वेरी जिप्सी एट हार्ट, यू नो, हु सैंग अंडर ओपन स्काईज एंड फेल्ट पैनिक इन साइड रेडियो और रिकॉर्डिंग स्टूडियो, क्योंकि उन्हें लाइव शोज करने की, वो एक बंजारन सी थी और वो ऐसी गाकर खुश थी. बट सुभाष घई ने उन्हें बहुत परस्यू किया और कहा नहीं, आपको तो ये गाना गाना पड़ेगा. और क्या फैसला किया, बिकॉज आई थिंक दिस सॉन्ग बिकेम वन ऑफ दोज आइकॉनिक सॉन्ग्स, यू नो, इन द फिल्म इंडस्ट्री. एंड सुभाष घई फर्स्ट हर्ड हर मेस्मराइजिंग वॉइस इन 1982 एट अ गैदरिंग. राज कपूर ने एक पार्टी रखी थी और वहाँ पर उन्होंने आके लाइव गाया था और पहली बार सुभाष घई ने उनकी आवाज़ वहाँ सुनी थी. जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. नफीसा, आई हैव योर सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट एंड आपने उसके साथ बहुत अच्छी एक शेर भी भेजा है कि जीवन एक टेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है, इसीलिए एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से सबके साथ मिलकर जियो, यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम खुद इस जगत में गेस्ट हैं. दैट इज वेरी वेरी ट्रू.

0: किशोरदा की आवाज, आई एम टेलिंग यू, मैं उनकी इतनी बड़ी पंखा हूँ. लाइक आई लव किशोरदास वॉइस और उनका अंदाज, द वे ही सिंग्स एनी सॉन्ग, ऐसे लगता है बस वो आपके लिए गा रहे हैं. इट्स हाउ कूल एंड रिलेटेबल हिज सॉन्ग्स बिकम. सो यही जो गाना है, एज वी नो, शालीमार फिल्म से है, 1978 में आई थी ये फिल्म और आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा था, इस गाने को. In fact, the usual combo of R.D. Barman, Nani Bakshi Sahab and Kishorda, they always came up with such wonderful tunes. और बहुत ही बड़ी मेगा बजट फिल्म थी शालीमार, bilingual language में बनी थी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, और बहुत बुरी पूरी तरीके से पिटी एट द बॉक्स ऑफिस. द हिंदी साउंड ट्रैक, दो गाने जो फिल्म के हैं, बहुत हिट हुए एंड दैट रियली हेल्प्ड इन द बिजनेस ऑफ द फिल्म. तो एक बहुत ही हॉन्टिंग सी आवाज़ है, यू नो, किशोरदा की, और वेस्टर्न वायलिंस यूज़ किया है, ट्राइबल हम्स, एंड आर डी बर्मन ने इंटरल्यूड बीच में जो डाला है, मेकिंग इट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैक मेड दैट टाइम इन द 70s एंड द 80s. एंड ऑफकोर्स ऑन स्क्रीन हमारे वन एंड ओनली धर्मेंद्र, और बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका कैरेक्टर फिल्म में. ही प्लेज दिस वेरी इंटरनेशनल थीफ, सीक्रेट एजेंट, और उनका जो कैरेक्टर इस गाने में, यू नो, ही इज टॉकिंग अबाउट ब्रोकन ट्रस्ट एंड सोरो. वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग. और हम आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे बिल्कुल 12 बजे तक. लेज इलामे पे आप हैं निलुफर के साथ ऑन ईस्ट मैम केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, एंड यस, इट इज वेरी वेरी कोल्ड. आप इंजॉय करो गर्मा गर्म गाने. किरण, you're saying you're loving the music, lovely weather and rhythmic songs. Well, you stay warm, enjoy your garma garam chai and behtareen gaane on East FM. Coming up in this hour, I also have Yaadon Ka Guldasta in a bit. So yeah, stay tuned.
1: East FM.
2: Nairobi, get ready for history in the making. For the first time ever, the biggest outdoor pre-Navratri celebrations is hitting the capital. Potana Surila Awaj Thi, Lakho Dilo Par Raj Karnar, Ekaj Naam, Jigardan Gadvi, aka Jigra. Mark your calendars for Saturday, August 22nd from 7:30 p.m. onwards at the Nairobi Gymkhana Hockey Grounds. It's going to be an unforgettable night under the stars, filled with incredible music, high energy and pure celebration. Tickets are selling fast on etickets.co.ke. For exclusive sponsorship opportunities, call 0118-408-208. Ekaj Manch, Ekaj Jadu, and Ekaj Naam, Jigra. Don't miss this biggest pre-Navratri event of the year, presented by CJ Entertainments, artist managed by BMT Agency and media partners East FM.
3: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

How beautiful are these songs, and they just never get old. 32 minutes past 10. Very good morning. Lazy Lame pe aap hai Nilufar ke saath on East FM, Kenya's premier Asian mix. So right now it's time for Yado ka Guldasta. और उसमें एक मैंने गाना ऐसा पिक किया, ये भी एक्चुअली ये क्या बताऊँ मैं, ये भी किशोर दाई का ही गाना है, बट एक इतना खूबसूरत सा गाना है ये. और एक चीज़ सिखाता है ये गाना कि चीज़ ज़िंदगी की जो भी बात है ना, आप ऊपर वाले पे छोड़ दो. वेदर वट एवर एवरी कहते ना, हर पहलू आपकी लाइफ का आप ऊपर वाले पे छोड़ दो और उसके फैसले पे भरोसा करो, और वो कभी आपको हाउ डू आई पुट इट, कभी नाराज़ नहीं करेगा. क्योंकि कभी कभार हमको ऐसा लगता है, हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, हम प्लान करते हैं, ये हमको चाहिए, ये इंसान चाहिए, ये फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, पर होता नहीं है. और फिर हमको लगता है ऐसा क्यों हुआ, हमको तो चाहिए था, हमने तो प्लान भी बनाया था, सारा कुछ हो गया था, फिर क्यों ऐसे हुआ. क्योंकि ये ऊपर वाले का प्लान था, ये आपके लिए अच्छा नहीं था. शायद आपको आज ना पता चले, कल पता चले, परसों पता चले, शायद 10 15 20 साल बाद पता चले, बट होता वही है जो ऊपर वाले का प्लान होता है, और वो ही हमेशा सही होता है. इसलिए कहते ना, गॉड्स प्लान इज द बेस्ट प्लान. सो मैं इसे कह सकती हूँ कि एक हम्द है, लाइक अ डिवोशनल इस्लामिक सॉन्ग काइंड ऑफ अ थिंग, एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल म्यूजिक. थोड़ा सैड सा गाना भी है, किशोरदा की आवाज़ है. और ये फिल्म वॉज बेस्ड ऑन द अरेबियन स्टोरी, एंड हाउ डू आई पुट इट, इसके हर गाना सुपर डुपर हिट है. इनफैक्ट मोहम्मद रफ़ी साहब का एक और गाना है इस फिल्म में, बहुत ही खूबसूरत है. तो ये जो गाने की जो फीचर किया गया है, वो एक्टर हैं संजय खान. ये आपका सबसे बड़ा क्लू है, ठीक है ना. वो एक डेजर्ट में चल रहे हैं अंडर द ओपन स्काई, एंड ही इज़ वॉकिंग, एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी ऑथेंटिक मिडल ईस्टर्न लोकेशन बैकड्रॉप. एक मस्जिद नज़र आती है इस गाने में दूर से. बेसिकली ये पूरा गाना मुंबई में सेट लगा था, वहाँ पर शूट हुआ था. अब आप मुझे बताओ ये कौन सा गाना है. बहुत सारे क्लूज दे दिए मैंने आपको. 0711046106 पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर लीजिए ऑन 0701106106.

चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। मुसर्रत नज़ीर को आपने सुना, अब थोड़ी देर में दिल धड़कने का सबब ये याद आया, नूर जहां को सुनिएगा। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में। मुझको मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में, आग है पानी है मिट्टी है हवा है मुझ में। और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। लीजिए अब नूर जहां को सुनिए।

अब सुनिए गुलाम अली को, हंगामा है क्यों बरपा, आकाश इस मुकाम पर पहुंचा दे उसका प्यार, आकाश उस मुकाम पर पहुंचा दे उसका प्यार, वो कामयाब होने पर मुझको बधाई दे, देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे।

हर आशना से उस बिन बेगाना हो रखा हूँ, हर आशना से उस बिन बेगाना हो रखा हूँ, मजलिस में शमा रूह की परवाना हो रहा हूँ, मजलिस में शमा रूह के परवाना हो रहा हूँ, साकी शराब सागर अब चाहता नहीं हूँ, साकी शराब और सागर अब चाहता नहीं हूँ, उसके ख्याल सुन मैं मस्ताना हो रहा हूँ। नैरा नूर को सुन रहे थे आप। अब इन्हीं की आवाज में, कभी हम खूबसूरत थे, सुनिए।